जो गुरु ग्रंथ साहिब विच कहा गया है, गुरु साहिब का वचन होता है, सत संगत सतगुर चट साल है जित हर गुण सिखा। कहने गुरु की संगत का एक स्कूल है जिदे विच पढ़ाई करके जानी है, पढ़ के बाहर आपां लोकां नूं इह दसना मैं पढ़ के ही आया। ते जे बंदा क्लास विच दो घड़ियां पढ़ ले ते बाहर जाके फिर अनपढ़ां वालियां मूर्खां वालियां गल्लां करे ते कई वारी पिंडां विच शब्द वरदे ने किहड़ा सी उह तैनूं पढ़ाउण वाला, अक्षर सिखे ने। गुरुद्वारे काहदे लई आउंदे आ? गुरुद्वारा एक सकूल बनाया सी गुरु ने कि सिख हर रोज आए अपने आत्मक जीवन नूं कमाए, इहदे जीवन दी सुगंधी बाहर लोकां तक भी पहुंचे, इहदे जीवन नूं देख के लोक प्रभावित होण। मैं अपने विषय वल तुरां। कबीर साहब ने प्रभाती राग विच बहुत सोहना एक बचन कहा है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब सर्व व्यापक रब नूं मानदा है, ना कि एक थां ते कोई जगह मुकर्र करके कह दिए रब इत्थे। बाबे नानक ने इस्लाम के घर विच जाके अरब पहुंच के मक्के खलो के जदों हजूर ने उधर चरण किए ने ते उन्होंने लत मारी ते इको गल कही, केड़ा काबर है जिहड़ा रब दे घर वाले पासे पैर करके पे। ते बाबे नानक ने कहा कि सजना उधर पैर कर दे जिधर रब दा घर है, उधर मेरिया लत्तां कर जिथे परमात्मा ने। इहदा मतलब सी तेन समझ पै जा कि खुदा सर्व व्यापक है, जब तक मैयर भरपूर देना तू आपे सर्व समान, सारिया थावां ते तू है। कबीर साहब का वचन है, उन्होंने दोनों नूं उपदेश दिता है। पहला वचन उन्होंने कहा कि जदों मैं मंदिर वाले पासे जाना वा मैं बाणी तो बाहर जाके नहीं, कहने उत्थे आवाज आउंदी है कि मूर्ति ही भगवान है। जदों मसीत विच वड़ना ते आवाज आउंदी है रब केवल मसीत विच है, कहिंदे ने फिर ये भी पता लगता है कि एक दक्षण वाले पासे नूं झुकदा पिया है, दूजा पश्चिम वाले पासे नूं सिजदे करदा है। ओह कहिंदे ने भलिया अपने अंदर झाकी मार, तेरे दिल दे अंदर भगवान बैठा, अंदर तक असीं तूं नमस्कार कीती ने। हजूर दे बचन असीं पढ़ने हां कि अल्लाह एक मसीत बस्त है अवर मुल्क किस केरा, हिंदू मूर्त नाम निवासी दोह मैं अत नहेड़ा, दखन देश हरी का वासा पश्चिम अल्लाह मुकामा, पर गुरमत कह रही है दिल मैं खोज दिला दिल खोजो ए ही थौर मुकामा। अपने दिल च खोज खां, तेरा असली ठिकाना रब तेरा बार रही, परमात्मा ता तेरे दिल दे अंदर टिकिया, तेरे अंदर परमात्मा वाहगुरु का निवास है। जदों तू दिल विच झाती मारेगा बार नजर खोल के तकेगा सर्व व्यापक परमात्मा ही दिशेगा। मैं फिर इस विषय नूं अगे तोरा, सारिया विच परमात्मा की जोत है, हर थां ते ओ परिपूर्ण परमात्मा सानू वेखदा पिया सुनदा पिया है। फिर की कारण? एक कुकर्मी है दूसरा कर्मी है, एक साकत है दूसरा संत है, एक बंदा गुरमुख है दूसरा मनमुख है। कि मनमुख दे अंदर रब की जोत नहीं, कि साकत दे अंदर परमात्मा की जोत नहीं, कि एक चोर एक बटपार डाकू दे अंदर साकत की जोत नहीं? जे ओहदे विच भी जोत है फिर वह चोर किवें बन गया ते एक साध किवें बन गया? पंज तत्तां दा बनिया शरीर है, की अंतर है? भाई साहब भाई गुरदास जी ने इस गल का निर्णय अपनी वार दी एक पौड़ी विच कीता है। कहिंदे इह गल तां स्पष्ट रखी कि परमात्मा सारिया विच है। उन्होंने उदाहरण दिती सी, गां भावें काले रंग की होवे, गां दा रंग चिट्टा होवे, गां दा रंग लाल होवे, गां दे सिर होण भावें कां सिंगां तों बनी हो बिना होवे, पर जदों भी किसी गां दे दुध नूं चोवांगे रंग सारिया का चिट्टे होवेगा। उन्हां दे बाहर दे रंग वख हो सकते ने, पर चेते रखो दुध लाल रंग की गां का दुध लाल नहीं, काले रंग की गां का दुध काला नहीं, पीले रंग की गां का दुध पीला नहीं। चमड़ी के रंग काले पीले नीले चिट्टे हो सकते हैं, पर दुध सारिया का चिट्टा है। तो भाई साहब कहते ने संसार विच विचरन वाले इत्थे आ कपड़े काले हो सकते, किसी की चमड़ी काली है किसी की श्वेत है किसी की लाल है, पर चेते रखी जे गावां रंग बिरंगियां ने दुध चिट्टा है, शक्ल वक्त हो सकती है रंग वक्त हो सकते हैं।

गुरु अर्जुन विघ्न नके नाशक विघ्न नके नाशक श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी गुरु हर कृष्ण मनावो बहोरी।

माणिक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंदो कर अनुराग एकंकारा सतगुरु तेह

0: ऐसा इन प्रेम धर के
1: गुरबाणी कर पाठ
0: गुरबाणी का पाठ कर रहे हैं
1: ओके उल्टा ही पुत्र जब
0: राम राम उल्टाती निकी मुसलमान की सा देवी मान की कहता
1: त्याग दियो लाख साठ
0: मूर्खता ही समझ करके गुरु नानक की बाणी उल्टाई है छड़का मारा राम राम।

अगे संतों नूं प्रचार कीता। उदू अगे इसे प्रकार तरीके चलदिया बाबा चंदा सिंह जी ज्ञानी होए।

महारानी, आप पुत्र मेरा राय सिंह, ते मैं अमृत छक लिया, मैं हूं जंगली चले जाना, क्योंकि उसका कारण है भाई घर में रहने का तो मेरा माहौल ही नहीं है। तू एक काम कर सकना, तू मेरे पुत नू संभाल सकना। अमृत वेले का वक्त नथे ने घुट के गल बकड़ी पाली, कहन लगे सजना की होया जे मैं हिंदू है, की होया जे मैं हिंदू है, तेरे बच्चे नू संभाल के रखांगा। उधरले पासे महताब सिंह अपने पुत नू नथे दी झोली विच पाउण लगा है, ते नाल इक गल कहन लगया, नथिया तू हिंदू घराने विच है, तेरे घर केसां दी भी अरबी हो जांदी है, पर मेरे पुत दे केस ना कटी, इन्हां नू संभाल के रखी, इन्हां संभाल के रखी। नथे ने बचन आखिया, कहन लगे दूजी गल, महताब ने बचन आखिया, कहन लगे दूजा काम यह करी अपनी जिंदगी दे अंदर, कदे लोड़ पई ते मेरे पुत नू भावे कोई गोली मार जाए, पर इनू वैसे किसी दे हवाले ना करी, कल डर के हवाले ना करी, खिमा करो जे। नथे ने वादा कीता, कहन लगे महताब सिंघा, तेरी मेरी दोस्ती है, ते तू चलिया गुरु दे काम है, यकीन करी मैं दोस्ती नू दाग नहीं लगन देंगा। और याद रखियो जे मुड़के जालम जेड़े ने, जो महताब सिंह में शहीद हुंदा, अगे जाके तुहाडे नाल गल सांझी करनी है, जदों महताब सिंह शहीद हुंदा उदों उह जालम, उन्हां नूं पता लगदा भी महताब सिंह दा पुत्तर राज सिंह इत्थे है, ते उह नत्था सिंह नूं बुलाउंदे ने नगर विच, ते उह नत्था सिंह नूं सारे नगर दे विच बुला के कहिंदे ने भी तेरे कोल महताब सिंह दा बच्चा है राज सिंह। उन्हें वेख्या भी सारे लोग नगर इकट्ठे होए ने, इन्हां डर जाणा, उन्हें मान लिया, कहिण लगे हां मेरे कोल है, मेरे कोल है, महताब सिंह दा पुत्तर है। कहन लगे फिर वो साडे हवाले कर, कहन लगे ठीक है मैं हवाले कर देना, मैं तो चंद रोज वैसे संभाल के रखे जी, हिंदुआं का की सिखां नाल काम है, मैं हवाले कर देना, कोई वड्डी गल नहीं, तुसीं मैनूं थोड़ा जिहा वक्त दिओ, मैं लै आवां, कि जो डर ना जाए, निकल ना जाए, तो मैं आप खुद लैके जाना, तुसीं मेरे नाल ना जायो। उन्हें आख्या ठीक है। नथा सिंह, नथे ने अपने घर जाके कंध पाड़ के विच नूं कोई टिकाणा बना के जिवें किवें मर्जी उस राय सिंह नूं लैके उह निकल गया। जदों पंजा दे विच उड़ीकदे रहे भी नहीं आया, ते उन्होंने मगरों जाके पिछा कीता, जदों पिछा कीता उन्हें उस वेले राय सिंह नूं भजा दिता, जिवें तैनूं टिकाणा मिलदा सजना चला जा, राय सिंह नूं भजा दिता। याद रखो जे नत्था मार दिता गया सी जालमां ने, पर उन्हें राय सिंह दा पता नहीं सी दसिया। यो महताब सिंह है, इहदा पुत्तर है राय सिंह। मैं एक बार फिर जिक्र कर दिया, राय सिंह दा पुत्तर है रतन सिंह भंगू, जिन्हें इतिहास लिखिया प्राचीन पंथ प्रकाश। और इतनी भी अर्ज कर दिया, जिहड़ियां घटनावां ने यह 11 अगस्त 1740 दी घटना है, आ जिहड़ी दस तुहाडे नाल सांझी करन लग्गिया। 1740 दा मतलब है गुरु गोबिंद सिंह जी दे ज्योति जोत समाउण तों बाद, शहादत तों 32 साल बाद, सिर्फ 32 साल बाद। क्यों? क्योंकि 1708 विच गुरु कलगीधर पिता जी धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब सच्चे पातशाह ज्योति जोत समाए सन नदेड़ साहिब दे विखे। अक्सर ये दोने सूरमियां ने प्रण किया, उथो चले ने बीकानेर तो चले ने, बीकानेर तो चले, ते इन्हां ने आउंदे स्कीम बनाई भी इवें मस्से रंगड़ तक किवें पहुंचिया जा सकदा, उत्थे आके सारे हालात वेखे एक एक, क्योंकि दोवें अमृतसर दे सन, इसने नूं गलियां दा पता सी सारियां दा। इन्हां हालात वेखे, हालात वेखे इन्हां ने ठीकरियां नगरों बाहर जाके, उदों मिट्टी दे भांडे लोक आम वरतदे सन, ते मिट्टी दे भांडे बाहर सुट दिया करदे सन, जल टुट जाए ठीकरियां पईयां हुंदियां सन नगरां विच। इन्हां ने ठीकरियां इकट्ठियां कीतियां, दो बोरियां भरियां, बोरियां भर के अपने दाड़ियां नूं जिवें किवें मर्जी सवारिया, ते इवें बनाया जिवें मुगल होण, मुगलां वर्गियां पग्गां सवार के बनियां, उस तरह दे सारा कुछ भेस बना के, ते आ गए, ते आ गए जिथे। मैं एक बारी फिर बेनती करा, क्योंकि सारियां गल्लां विचों दसियां नहीं जा सकनियां, श्री अकाल तख्त साहिब दे पिछवाड़े वाले पासे तों अगे रस्ता इधरों हुंदा सी, जदों गुरु तेग बहादुर साहिब जी आए सन, उन्हां दा बनिया हुआ थड़ा अज भी उस पासे है। मैं गल नेड़े रखा, समा मेरा बहुत सीमा है। ए गुरु के सूरमे उत्थे आए, ते इन्हां ने बोरियां में कंधे ते रखियां हुईयां ने, जिथे अज
ਅੰਦਰਲੀ ਇਲਾਚੀ ਬੇਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਦਰਲੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ

इस बंदे दा नां है दीवान कौड़ा मल। जिमें यया खान दे कोल लखपत राय है, इवें शाह निवाज दे कोल ए कौड़ा मल है, ये उहदा वफादार वजीर है, सौखा कर दिया। भावे इन्हां दे आउंदे होर सन पर मैं समझण लई सौखे कर रहे हैं। हुण जदों यह शाह निवाज आ गया ते इन्हे अपना वजीर दीवान कौड़ा मल लै आंदा, यया खां भज गया, वह एकांत में जिंदगी गुजारन लग पिया। उहदा जिहड़ा वजीर सी लखपत ओह फसिया होया हुण इन्हां दे कोल, ते उहने जुर्माना कीता शाह निवाज ने 3 लाख रुपया, ते इहदे कोलों भरिया ना गया लखपत दे कोलों। जदों ना भरिया गया आखिरकार उहने जिहड़ा दीवान कौड़ा मल है उहने एक वचन कहा, कहन लगे जे इहदी खातर 3 लाख मैं भर दिया तू लखपत मैनू दे देगा। शाह निवाज ने हामी भरी भी हां मैं लखपत तेनू दे देंगा, तेना वादा रहा। 3 लाख रुपया कौड़ा मल, दीवान कौड़ा मल ने सिख जगत इन मिठा मल कहिंदा है, सिख जगत इन कौड़ा मल नहीं कहिंदा। इतिहास विच ना जदों सिख ना लिया करदे सन ना इन मिठा मल किया करदे सन। इहने 3 लाख रुपया भर के लखपत राय नूं अत्यंत सिखी दा घातक है, इन्हें करीब 25,000 दे नेड़े सिख शहीद किया लखपत राय ने। मैं तां करके बेनती करना, सानू पता होना चाहिए दीवान कौड़ा मल ने 3 लाख रुपया भर के लखपत राय नूं ले लिया। फिर सिखां दे कोल इन्हां ने आवाज दित्ती भी भलियो तुहाडा दोषी लखपत राय मेरे कोल है, मैं भावें 3 लाख रुपया भर के नूं अपने हवाले किया है पर मैं तुहाडे कोल पैसे नहीं लवांगे, सिक्खी दा खून पींदा रहा तुसी इहदे कोलों बदले लो। तां ओ दीवान कौड़ा मल है ना जिहड़ा ओनू सिख जगत बहुत सत्कार दिंदा है। इन्हें वैसे भी जस्सा सिंह आलूवालिए इन्हें एक बारी फौज विच जस्सा सिंह आलूवालिए ने दीवान कौड़ा मल की मदद की सी। सिक्खी नाल इहदे जिहड़े संबंध सन वह मिठे सन, कौड़े नहीं सन, हालांकि यह भी दीवान है। लखपत राय नूं लै लिया गया। हुण गुरु के सिखां ने फैसला किया भी इस पापी ने जितना कुछ सिक्खी दे उत्ते कहर किया है कम से कम इहनूं इहदा बदला जरूर देना चाहिए। आउण वाले समें विच इह गल पता होवे भई इहो जे पाप कमाउण वाले बंदे दी जिंदगी दा हाल की हुंदा है। कुछ एक विद्वानां ने राय लिखी है, इहनूं थल्ले टोआ पुट के कुछ एक मौतां बड़ियां माड़ियां होईयां ने। जकरिया खान दा जिक्र दास तुहाडे नाल पहलों कर चुका होया, माण करो सिखा तेरे, सिखा दे कोल किड्डा माण मत्ता इतिहास है। जेड़ा जकरिया खान वक्त दा हाकम सी 1726 तो 1745 तक लोकां दीआं सलामां लैंदा रहा, उह जकरिया खान भाई तारू सिंह दी जुत्ती नाल मरिया है। ते अज फिर एक वक्त आ रहा है लखपत राय नूं सिखा ने बंदी बना के एक थले, यह हुण तक भी पापी अपनी गल नूं अहसास नहीं सी करदा, इन्हें हुण तक भी सिखां कोल माफी नहीं सी मंगी। सिखां ने टोआ पुट के थले ते उत्ते जिवें किवें मर्जी डंडियां दी छत पा के छोटी मोटी इहनूं थले विच बिठाया, ते उहदे उत्ते जंगल पाणी जाया करदे सन, थले लखपत बैठदा सी। जदों फिर पुकार कीती भी सिख बख्शंद हुंदे आ ते मेरे कोल गलती हो गई, फिर सिखा ने उत्तों भावे कर लिया सी, इहनूं कुछ दिन ही उत्थे रखिया, पर इस पापी दी जिंदगी दा अंत इवें गुरु के सिखा ने कीता। ए लखपत राय बड़ी बुरी मौते मरिया सी, ए उदों एक गल कहिंदा हुंदा सी। एक मैं छोटी जी गल भुल गया विचों, मैनूं फिर थोड़ा जिहा पिछे जाना पैणा है तां फिर इस घटना दे नाल आपां संबंध कर सकदे हां। जेड़े ने 3,000 जेड़े 1,000 सिख इन्हे पहला पकड़िया सी, मैं तुहाडे नाल पहलो सांझ पाई सी भी इन्हे जदों कुछ ना चलिया ते दुकानदार बेचारे जेड़े आम रोजी रोटी कमाउण वाले सन, लोग सिक्खी नाल माड़े मोटे संबंध सन, उन्हां सारिआं नूं पकड़ के लै गया सी नखास चौंक विच। जेड़े ने ओह 1,000 बंदा शहीद कीता सी ना, उदों इहदा खुद दा उस्ताद, इहदा खुद दा राजनीति सिखाउण वाला बंदा, उहदा नां इतिहास ने लिखिया गुसाई जगत भगत, इको ही बंदे दे नां ने, गुसाई नाल तखलस है, जगत भगत उहदा नां है। गुसाई जगत भगत दीवान कौड़ा मल

जेडे ओ सन ओ सिर्फ धन दौलत पिछे लड़दे सन, गुरु का सिख गुरु लई लड़दा सी, ओ सच लई लड़दा सी। उदा मकसद किसे जमीन दे टुकड़े ते कब्जा करना नहीं सी हुंदा, उदा मकसद सी सतगुरु जे मेरी जिंदगी बच गई ता मैं तेरे अनुसार गुजारांगा, जे मेरी जिंदगी तेरे लेखे लग गई ता मैं रब दे घर विच ज्यों जल मैं जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गबन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुरबान दे मुकाम ते पहुंच जावांगा। अगली गल, उन्हां दे कोल पंत प्रकाश दे बोल दस कई बारी तुहाडे नाल सांझे करदा आया। अगली गल सब तो वड्डी इह सी, मैं जखीरो सिंगन पास, इन्हां कोल कुछ भी नहीं, जखीरे दा मतलब हुंदा है खजाना, इन्हां कोल कुछ भी नहीं। मैं जखीरो सिंगन पास, बस्तर शस्त्र हीन सो खास, जेड़े खास पहनण वाले बस्तर ने शस्त्र ने इन्हां कोल कुछ भी नहीं बेचारे कोल। हुण जिहड़ा बोता सिंह ते गर्जा सिंह देखो वकत दे हाकम नाल टक्कर लैनी ते डंडे पकड़ के खलोते ने रस्ते चो टैक्स लै रहे ने, है ते अनहोणियां गल्लां ने सिख इतिहास विच। उन्हां कोल चंगा हथियार भी कोई नहीं, भी आउंदे ने पंज सत नूं ते बूरो सांभ लैण, डंडियां नाल ही उन्हां नूं मार मुकाया। कैसा कैसा इतिहास है सिखां दा। सिर्फ बेनती कर रहा सा, मैं जखीरो सिंगन पास, बस्तर शस्त्र हीन सो खास, रोगी अब कुछ बिन मर जाही, रोगी बेचारे दवाई तो बिना मर जाते ने, हट पट्टन बाजार सो नाही, इन्हां दे कोल ना बेचारे को बाजार विच हट्टी भी जाने दा वक्त ही नहीं, जंगलां विच रहिंदे ने, कौन सिखां दे सिरां दा मुल रखिया हुंदा सी, किते जाना। नांगे खरे ओ भुखे प्यासे, दारू सिक्का नहीं किस पासे, नांगे ने खरे ने भुखे ने, कई कई दिनां दे भुखे ने, फिर भी रब दे शुक्र विच ने, कोई पहनने लई कपड़ा भी नहीं, कोई खाने लई भोजन भी नहीं, कुछ भी सहूलत नहीं। नांगे खरे और भूखे प्यासे, दारू सिक्का न किस पासे, फिर पुछदा भी जे इन्हां दी हालात माड़े ने फिर जिउंदे किवें सन। आ हुण सिख भुला बैठा, बस आ जिहड़ी दात है ना इहदे तों विछड़े होए असीं। उन्हें जवाब दिता रतन सिंह ने भंगो ने, कहन लगे जिउंदे काले आसरे सन, कहिंदे जिउंदे इस आसरे सन, गुर बचनन की उनको आस, यही खजानो सिंगन पास, कहन लगे उन्हां नूं गुरु दे बचना ते अटल भरोसा हुंदा सी, बस इको खजाना गुरु के सिखां कोल हुंदा सी। अज सिख नूं उन्हां बाणी ते भरोसा नहीं है जिन्ना हथ देखण वालियां ते भरोसा है, तां ही करके असीं खुआर हो रहे हैं। जाबे गह विपरन की रीत, मैं ना करो इनकी प्रतीत, असि वो लकीर टप गए। आओ प्यार वालियो, इत्थे सिखी दा एक दौर खत्म होया, इस इतिहास दा एक दौर खत्म होया, उस तो बाद अगला दौर है जिहड़ा मिसलां किवें तरक्की करके राज तख्त ते महाराजा रणजीत सिंह नूं बिठाउंदियां ने, इह आपां कल तो जिहड़े दो चार दिन बाकी ने उन्हां विच मैं कोशिश करांगा पूरा कर सकां। होईआं भुल्लां दी खिमा अदब सत्कार नाल आखो जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की साहिब जीओ। जो हमारी विदोती मेरी सतगुरा, साबिद तुम हर जानी आपे, हम रुलते फिर

0: जहां खले कल की तर तेर और प्रमोद कर पहुंचे तेर।
1: जदों जंग जित लिया फतेह पा लई जिथे कलगी धर महाराज धीरज धारी सतगुरु धीरज धार के खड़े ने उथे जा पहुंचे सारे।
0: सैदा बेग उतर है तरे गुर के चरण बंद ना करे।
1: सैदा बेग घोड़े तो थले उतरिया आके उन्हें सतगुरु महाराज जी नू मत्था टेकिया।
0: बोले प्रभु उम्र बरकरार मिले सुखोब इन तकरार।
1: महाराज ने इस तरह का वचन किया कि लम्मी उम्र होवे तेरी और तू बड़े सोहने समय ते बड़ा चंगा मौका सी जदों तू आके सामू मिलिया है।
0: सैदा बेग समझ तू बेग आहो कंधारी बांधो तेग।
1: महाराज कहन लगे सैदा बेग तू बेग तो भाव छेती इस गल नू समझ लै हुण याद कर लै बीतिया समा अपना उन्हां जन्मां दे विच तू कंधारी सैं ते तेग बांधा हुंदा सी सोहनी तेग चंगा लोहा लिया के कुटना मुठे बनाउणे सोहणे शस्त्र बांधा हुंदा।
0: पूरब गुरु नानक तुम मिले सेवा करी होती तब भले।
1: जदों असी पहला गुरु नानक देव जी के जामे दे विच सां उदों तू साडी बड़े भले ढंग नाल सेवा कीती सी।
0: तब हम तो स्वयं कह गए कबे बुलावेंगे हित किए।
1: उदों तेरे नाल असी इस तरह का वचन किया सी याद कर नाल अपने वल्लों भी कृपा दृष्टि कीती है कि इहनू याद आ जावे। तैनू ये कहा सी कि असी कदे तैनू बुलावांगे अपने पास कदे तैनू मिलांगे ये याद कर तैनू वचन कहा सी।
0: शस्त्र बिलोकन करे त्यारो तब परखेंगे जथा उचारो।
1: फिर तू जिवें कहना ना कि मेरी तलवार देखो ये बड़ी तिखी है इहदी धार बड़ी तिखी है फिर तदों असी तेरे शस्त्र देखांगे उदों परखांगे तेरी तलवार नूं।
0: परचा प्रथम शब्द को किया पाछे इस प्रकार कह दिया।
1: पहलां तैनू शब्द दा परचा पाया सी पहलों असी नाम जपाया बाणी पढ़ाई भाव नाम दे विच लाया सी तैनू ते बाद दे विच फिर इस तरह दा वचन कीता सी कि असी फिर कदे जदों सोहना समा आवेगा तेरे शस्त्र देखांगे।
0: तुपक कमाइल करामात चिन खैर खिलस जन्नात।
1: सो इस तरह का जिहड़ा वचन सी तेरे ताई कीता सी कि जिहड़ी है तू ये कहा सी सानू कि जिहड़ी बंदूक चलाउणी है इहदी गोली जिहड़ी चलाउणी है कमाल दे नाल ये एक करामात है। तू कहा सी कि तुहाडे अंदर बड़ी करामात है तो इस तरह के नाल असी तैनू भी कहा सी कि जिहड़ी है ना जे बंदूक चलाउणी है बंदूक की कमाई का कमाल ऐसा होवे कि लोग इसनू करामात समझन। बंदूक का कमाल करामात है इस कमाल वाले नू केड़ी चीज नहीं मिलती भाव सारिया चीजा मिलेगी दोस्तों वाली दोस्ती बेशतां मिलनगियां बेशतां दोवां लोगों के सुख मिलणगे दोस्तां ने तो खुश होना ही होना ते नाल फिर कमाल करके सूरबीरता होवेगी सूरबीरता दे नाल फिर परलोक दे विच भी जगह मिलती है।
0: एती बात गुरु जब कहे समझो मुगल हृदय तब सहे।
1: जदों उहदे बोले हुए बचना नूं सतगुरु ने दोहराया फिर कि तू याद कर कि तू सानू केड़े केड़े बचन करदा हुंदा सी की सानू तू कहा सी चे ना तू कहा सी केड़ी नहीं खैर तो भाव नेकी तो खिलस जिहड़ी है सच्चा दोस्त जिहड़ी दोस्ती है इसे प्रकार जिहड़ा जन्नत दा है वाचक भाव स्वर्ग बई जिहड़ा तलवार चलाउणी जाणदा है शस्त्र चलाउणे जाणदा है सूरमा जोधा है सूरमे नूं इस लोक विच भी वडियाईयां मिलदियां ने अते परलोक दे विच भी जाके उन्हूं वडियाईयां मिलदियां हन।
0: एती बात गुरु जब कहे
1: इना बचन सतगुरु महाराज जी ने जद कहा
0: समझे मुगल हृदय तब सहे।
1: उस वक्त तो मुगल सैद खान अपने मन दे अंदर इस गल नूं निश्चय करके समझ गया
0: परे ओ अगारी दंड समान
1: जिवें दंडेवत भाव दंडौत बंधन कर लग्या लम्मे पै जाईदा अगे यां गुरां दे अगे लम्मा पै गया
0: राख राख मुझ पीर महान
1: हे महान पीर हे गुरु नानक देव जी हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह अपनी शरण विच मैनू रख लो रख लो
0: रावर दर्श सुने बच जबै
1: आप जी दे दर्शन जदों कीते जदों बचन सोहने सुने
0: पूरब सिमरत भी अब सबै
1: ओ जिहड़ियां पिछलियां सारियां चीजां सी बचन बलास सी अपने ओ तुहाडा रूप ओ मैनू सारा याद आ गया
0: भई शक्त मुझ बिखै विशाल
1: मेरे विच बड़ी भारी शक्ति हो गई है
0: रखो पीर जी ले ओ संभाल
1: पीर जी हुण तां तुसी रख लो तुसी संभालो मैनू
0: जितक प्रथम की बात उबाचे
1: जिन्ना का आप जी ने पहले जेड़े बचन कहे सन
0: सब जानी मैं बीती सो साचे
1: मैनू याद आ गया के सारियां गल्लां बिल्कुल सच्चियां मेरे नाल बीतियां हन
0: दे तीरज तब प्रभ ठेग राखा
1: उस वक्त महाराज जी ने इनू तीरज दिता थापड़ा दिता अते अपने कोल ही रख लिया नाल ही
0: जिस को नित दर्शन अबलाखा
1: जिनू हर रोज सैदा बेग नू एक दर्शना दी अबलाखा ही सी होर कोई इच्छा नहीं सी
0: मुगल प्रमोद कलो और पायो
1: मुगल ने भाव सैदा बेग ने मन दे अंदर बहुत खुशी महसूस कीती
0: जीत कडेरा सकल लुटायो
1: जिन्ना कडेरा सी पैसा धन दौलत पदार्थ ओ सारा ही लुटा दिता अपनियां फौजां नूं ही दे दिता
0: सब किछ त्याग रहे प्रभ पास
1: सारा कुछ छड़ दिता कहण लग्या भई मैनू अपनी मंजिल मिल गई है इस करके मैं हूं गुरां दे कोल ही रहांगा
0: वे परलोक सुख लागी आसा
1: हुण मैनू ए आसा लागी मन च कि मैनू हुण गुरां दे कोल आके कोई फिकर नहीं है इस लोक दा सुख भी मिलेगा परलोक दा सुख मिलेगा
0: सगल तुरक गए जब दूर उतरे डेरे बिखै हजूर
1: जदों सारे तुरक चले गए बहुत दूर लंघ गईयां फौजां उन्हां दीयां तां महाराज सच्चे पातशाह ने जिथे अपना डेरा कीता होया सी उथे जा के उतरे
0: खान पान दाना तिन पाए बसे निसा पूरब की थाए
1: घोड़ियां नूं भी खाना दाना पाया है और फौजां ने भी लंगर छकिया है अते रात नूं विराजमान होए
0: भई प्रभात कूच कर देन
1: अमृत वेला नितनेम करके उस तो बाद सूर्य दे चढ़ाओ नाल

0: महाराज ने देखा कि घोड़ा बड़ा सोहना है, बड़ा सुंदर है, सुडौल है, चंचल है, फुरतीला है। इस तरह घोड़े नूं देख के, शस्त्र नूं देख के, एक तैयार पर तैयार सिंह नूं देख के, इस तरह सतगुरु जी बड़े खुश होंदे हन।
1: उठ कर नानिद तब चल आए, एक रकाब पग पंकज पाए।
0: कृपा दे के जाने सतगुरु जी उठ के उस वक्त आए ने, घोड़े दे एक रकाब दे विच अपना जो चरण है खब्बा चरण पा के घोड़े दे उपर चढ़न दी तैयारी विच हन।
1: ग्रीव केस गै है के जवै, उकसे उपर चढ़ बे तवै।
0: ये जेड़े घोड़े दी गर्दन दे उपरले पासे वाल हुंदे ने, इन्हां नूं पकड़ के चढ़िया जांदा है। महाराज ने जदों उहदी गर्दन दे वाल पकड़े अते रकाब विच चरण पाया, जदों घोड़े दे उपर चढ़न लगे,
1: उछलियो घोड़ा बल को भरियो, ने आसन पर श्री प्रभु थिरियो।
0: घोड़ा उछल गया उस वक्त, छाल मार गया। तां उस वक्त सतगुरु महाराज फिर घोड़े उत्ते

0: महाराज वापस उतरिया एकदम धरती ते खड़े हो गए, पर सज्जी बांह नूं एक झटका वज्या थोड़ा जिहा, एकदम घोड़े ने छाल जो मारी। सतगुरु फुरतीले आप भी बहुत ने, एकदम दे नाल अणजाण बंदा हुंदा तां घोड़ा उन्हूं सुट दिंदा, पर सतगुरु सच्चे पातशाह तां आप मालक ने, सृष्टि दे अंतरजामी सतगुरु जाणदे ने की होण वाला है। इस करके सावधान रहे।
1: जडे बोर पीड़ा कुछ पए, सीतुरमाल संग बंद गए।
0: जदों दोबारा फिर घोड़े ते चढ़े, बांह विच कुछ पीड़ होई, झटका वज्या बांह नूं, फिर सेवक ने चिट्टे

0: महाराज जी ने उस वक्त तो पहला घोड़े नूं हौली हौली तोरिया, तोर के चंगी तरह फिर एकदम तेज घोड़े नूं भजाउणा, सूरज वल नूं मूंह करना, भजा भजा के हफा देना, इस तरह फिर घोड़ा ठीक हो जांदा है।
1: बहुत आए कर भले फंदायो, पुन जननी मंदर प्रभ आयो।
0: घोड़े नूं भजा के फंदाया, चंगी तरह छालां भी मरवाईयां, वो घोड़े नूं भी पता लग जांदा कि बंदा तकड़ा जिहड़ा मेरे उत्ते कोई भी बैठा है कैसा है, किन्ना क जानकार है। वह भी समझ गया, क्यों गुरां दे जदों सुते सिद्धी सतगुरु जदों चरण पा के उत्ते बैठ गए तां घोड़े नूं भी पता लग गया कि मैनूं किड्डी महान सेवा मिली है। पहला मैं अपनी बड़ी मूर्खता कीती, अंदर पछताउंदा है। सतगुरु महाराज घोड़े नूं इस तरह घुमाउंदे होए आ के उतरे महिलां दे सामने माता जी

0: फिर उतर के घोड़े तो अंदर गए महलों के माता जी नूं जाके पैरी पैणा करते सन, हमेशा सत्कार करते सन, फिर जाके कोल बैठे हन।
1: गुरु सपूत पर दृष्ट पसारे, अत प्रिया हेरत है बलिहारे।
0: अपने गुरु सपुत्र दे उत्ते माता ने दृष्टि पाई, सारा शरीर तकिया,

0: आप जी कृपा करके मेरे संशय का उत्तर दियो जी।
1: हिंदू मुसलमान है कने?
0: हिंदुआ ते मुसलमाना दी गिनती तो बहुत ज्यादा है जी।
1: जै कह जग में दुष्ट सो बने?
0: जिथे किथे तुरक जेड़े ने दुष्ट बने बैठे संसार दे विच होर भी।
1: पंथ खालसा हो जस थोरा?
0: ये जरा खालसा पंथ है ये थोड़ा जा ही है गिनती दे विच।
1: पयत कहो कहो को टोरा?
0: कोई कोई टोले ही मिलता सिंह है, कोई सिंह लभदा नहीं है थां थां दे उते।
1: सकल सतर को हाथ कर कैसे?
0: सारे दुश्मनों नू मार करके किस प्रकार?
1: राज पाए किम कहिए तैसे?
0: आप जी ने कहा कि खालसा राज करेगा धरती ते, ये तो इन्ने ज्यादा ने तुरक तो फिर पहाड़िए हो राजे, ये खालसा गिनती च बड़ा थोड़ा जहा है, ये दसो मेरे मन का शंका भाई इन्ने बंदियां दे उते थोड़ा जा खालसा किमें राज करेगा?
1: वधे तेज किम लहे धरने?
0: तेज इन्ना किमें वधूगा इन्हों का, किमें धरती सारी तुसी कहने सारी धरती ते राज करना इन्होंने।
1: ठहरे राज कौन कर करने?
0: इन्हों का राज जेड़ा ठहरेगा केड़ी करनी करके ठहरेगा?
1: बहुतन की किरत अलप करें किम?
0: ए बहुतियां दी किरत, बहुते बंदियां दी किरत भाव जेड़ा एक लख बंदे ने कम करना है ए हजार बंदा किवें कर सकता है? मैं तो यह पुछदा भी इन्ने बंदियां दी किरत थोड़ा खालसा किवें कर सकता है?
1: बन अल्प की बहुतन ते तिम?
0: सो इसे प्रकार अल्प थोड़िया दी बहुतियां तो किवें किरत हो सकती है?
1: हिंदू तुरकन बड़ो समाज?
0: क्योंकि हिंदू ते तुरकां दा समाज राज बड़ा वड्डा है।
1: सब रिप पर किम ठहरे राजू?
0: सारे दुश्मनों के उत्ते खालसे दा राजू तो भाव राज किवें ठहरेगा?
1: कहिए पंथ सुने प्रभ तेरा?
0: सो महाराज सच्चे पातशाह आप जी का जो पंथ कहा जाता है ये किवें लाभ होवेगा पंथ नूं इस गल दा?
1: हान लाभ जाने इस बेरा?
0: सो आप जी दसो कि पंथ हान लाभ किवें प्राप्त करेगा, किस तरह राज करेगा?
1: वरतें वरतारा जग जथा?
0: जिवें जग दे विच वरतारा वरतेगा आउण वाले समय च।
1: श्रीमुख सुंदर ते कह तथा?
0: श्रोमणी मुख विचों सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह ने उस वक्त बड़े सुंदर सोहने बचन इस प्रकार कहे।
1: दोहरा वरतारा वरत जगत सुनो सिख चित लाए?
0: वरतारा वरतेगा जगत दे विच सुनो सिंघो चित ला के इस गल नूं।
1: सतगुर जैसी भावसी तैसी चलसी वाए?
0: ये तो साडी मर्जी ते हुंदा सारा कुछ, जिवें असी चाहुंदे आ उसे तरह की हवा चल पेगी अपने आप ही दुनिया घुम जाएगी।
1: खाए गो खर्च लेंगो लाल?
0: सो इस तरीके दे नाल कहंदे खाणगे खर्चणगे लएगो लाल। हुण इथों खालसे दे महाराज ने कुछ अर्थ कीते ने जिहड़े डूंघाई विच ने, खाएगो दो खा खर्च खखा ते लेगो तो लल्ला ते लाल। इस प्रकार अगली पंक्ति पूरी करेगी, सरकैगो युद्ध माहे करैगो निहाल। वो सरकै दे सस्से नूं लैणा, ये तीन अखर मिला के बनता जिहड़ा साडा खालसा है। ये खालसे दा एक पूरा सतगुरु ने उच्चारण किया इत्थे कि खालसा अगे नूं सरकेगा जंग जितेगा अगे वधेगा अते दुनिया नूं निहाल करेगा खालसा।
1: सरकै गो युद्ध माहे करो गो निहाल?
0: सरकै गो अगे नूं खालसा सरकेगा वधेगा अते दुनिया नूं निहाल करेगा।
1: कारी लग लक्ष्मी सिमट सगरी आने सार?
0: खारी तो भाव खारा समुंदर, उस समुंदर तक लक्ष्मी सिमटी जिन्नी कठी हुई है सारी आनेगा सार जंग करके लोहा खड़का के। हुण इन्हां अखरां तो की लैंदे खारी तो खखा खा री छड़ देना, खा लक्ष्मी तो लल्ला, खाल ਫਿਰ ਸਿਮਟੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਗਰੀ ਤੋਂ ਸੱਸਾ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਚ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਹੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲੱਛਮੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ।
1: ਖੜੇ ਲੜੇ ਸੰਗਰਾਮ ਮੈਂ ਖਲਕ ਕਰੇ ਗੋਪਾਰ,
0: ਖੜ ਕੇ ਲੜਨਗੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖਲਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਹੀ ਅੱਖਰ, ਖੜੇ ਤੋਂ ਖੱਖਾ, ਲੜੇ ਤੋਂ ਲੱਲਾ, ਸੱਸੇ ਤੋਂ ਸੰਗਰਾਮ ਤੋਂ ਸੱਸਾ, ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੜੇ
1: ਕਰੇ ਸਾਰ ਕਾ ਮੇਲ,
0: ਸਾਰ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵ ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਹਾ, ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਬਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਨੇ, ਤੁਰਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਰਕਾਂ

0: सुपते निसमें सतगुर मन भावत कर खान अमृत वेला मैं उठी की नो सोच स्नान।
1: धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पवित्र हजूरी में सजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा साहब संघ जी आओ प्यार सत्कार सहित फतेह उच्चारण करिए वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। धन धन सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज चल रहे लड़ीवार कथा पावन पवित्र प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। इस प्रकार श्री आनंदपुर साहब विखे सज के आप संगतां नूं उतार रहे हैं। एक साधु महात्मा जो नग्न अवस्था दे विच चमेली दे फुल अते गुलाब दे फुल लै के मत्था टेकिया है। सो महाराज ने वचन किया इन्हां दी जरूरत नहीं सी क्योंकि जदों मनां दे अंदरों दुविधा मिट जांदी है सारे व्यापक इक्को ही रूप दिखदा है। उन्हां गुरमुखां दे तां दर्शन ही भेटा है। सो इस तरह फिर होर वचन बिलास किन्ना धाना किहड़ी नदी दे पास जमा पिया है। फकीर नूं कहा कि खाली हथ आ जाते तां वी कोई डर नहीं सी पर फकीर ने कहा खाली हथ आना तो है वह बंदे दे मन दे अंदर जिवें कालख हुंदी आमदन वाला हथ जिहड़ा कुछ लैके आवे वह शुद्ध रूप में सही जीव है। सो इस तरह के वचन बिलास इन्हां संतां दे नाल होए ने। आओ अगे कुछ वचन बिलास कवियां गुणियां ज्ञानियां पंडितां नाल कर रहे ने। जिमें आम तौर पर सतगुरु सभा लगा के बैठते ये कोई जरूरी नहीं कि गुरसिखी के वचन आवे सुते सिद्धी सतगुरु कवियां की जनरल नॉलेज देखते हैं किन्ना कि इन्हों ज्ञान है। कई प्रश्न करे चाहे वह प्रश्न साढ़े नाल संबंध रखते ने जा नहीं रखते कवियां दे ज्ञान परखना उन्होंने जवाब देने ने उन्होंने जिहड़े उत्तर ने उन्होंने सुन के उत्तरां नूं फिर सतगुरु दसणगे नहीं असल विच ये गल इस तरह नहीं है ये गल इस तरह है। क्यों कवियां दे जवाब सुन के उन्होंने भी निरुत्तर करनगे प्यार सत्कार नाल। आओ श्रवण करते हाँ प्यार सत्कार नाल दसना करिए पवित्र गज के आ